0: solange du echt und natürlich bist.
1: माय शक्ति, आज पहली बार तुमने काम की बात की है।
2: Education.